लोकसुरे सुनगे संगीत लाई माया गाना मानिवे जी धारे को गाभा को मेला भैसा क्यों नहीं आवेला भैसा क्यों नहीं आवेला मानिवे जी धारे को

खेता हैरो पाऊं और सर को महीना मा मिली राजू ली खेता हैरो पाऊं और सर को महीना मा आ को छुपु मा छुपु के तमरो पाऊं नाना को बियोचा बाई नीचे रखूँगा रंबेरा

0: नामले लिजौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने हो नि हालै छ अनुगमन दिने व्यवस्था चाउसो गिदिए
1: गेछ छामेला खोरे ल चाउसी परिए हजिदे तरिन गई गेछ नेके लैजु अब नजिले बने गेम ये ल गेछ नेके मलाई औले नयो के नाइ गे
0: वन जंगल स जुडिसि हो गेम बारे ल बालीमाली कुचुला चुली यात्रा हो सकाउ छु छिनि ने चाउसो सैले के खेले ह
1: वन जंगल मेला के गेमाई गे नेला जिकिनि पार
0: ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सुनसरी गाउँ पालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यालयलाई खबर दिए
1: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सजग विपद व्यवस्थापन समिति प्रधान रोल्पा

0: प्रधान कार्यालय रोल्पाको अपील।
1: बिना अनुमति वन जंगल प्रवेश नगरौ। वन क्षेत्र में चुरोट सलाई लाइटर न लैजाऊ। वन में रहकर रूख बिरुवा लाछा पोथरा काटने हांगाबिंगा छिंगलने वा बोक्रा झिक्ने कार्य नगरौ।
0: सूर्यास्त पछि र सूर्योदय अगाड़ी वन प्रवेश नगरौ। प्रतिबंधित जड़ी बुटी संकलन तथा ओसार पसार नगरौ। वन में डढ़ेलो न लगाऊ र गोल पोल्ने कार्य नगरौ।
2: जंगली जीव जंतु र पशु पंछी को शिकार नगरौ। वन क्षेत्र दर्ता करने वा खनजोत आवात्र करने कार्य नगरौ। वन क्षेत्रबाट ढुंगा टिट्टी बालुवा वा माटो न निकालौ।
0: नर्सरी वा वृक्षारोपण क्षेत्रको तारबार अथवा बिरुवा नोक्सान नगरौ। सामुदायिक वन भित्र विधान र कार्य योजना विपरीत रूख काट्ने, घर छाप्रो बनाउने, खोरिया फडानी गर्ने, ढुंगा माटो बालुवा चट्टान निकाल्ने वा अन्य कुनै व्यवसायिक कार्य नगरौ।
1: वन क्षेत्रमा खुल्ला चरिचरण नगराउ। वन क्षेत्र घट्न नदिनका लागि वन क्षेत्रको जग्गा अन्य काममा प्रयोग नगरौ।
0: यी सबै कार्य वन ऐन 2006 बमोजिम दण्डनीय भएकाले कोही कसैले यस्तो कार्य गरेको देखेमा वा फेला पारेमा नजिकैको प्रहरी वा वन कार्यालयमा खबर गरौ।
1: वन जंगल संरक्षण गरी असल नागरिक बनौ। वन अपराधलाई दुरुत्साहन गरौ। डिभिजन वन कार्यालय लिबाङ रोल्पा।
0: निकाल्ने वा अन्य कुनै व्यवसायिक कार्य नगरौ।
1: वन क्षेत्रमा खुल्ला चरिचरण नगराउ। वन क्षेत्र घट्न नदिनका लागि वन क्षेत्रको जग्गा अन्य काममा प्रयोग नगरौ।
0: यी सबै कार्य वन ऐन 2006

ट्राफिक नियम को पालना गरौ, सवारी दुर्घटना बाट आफू बचौ अरूलाई पनि बचाऊ, मादक पदार्थ तथा लागू पदार्थ सेवन करी सवारी साधन न जलाओ, यति क्षमता भन्दा बढी राखेर यात्रा नगरौ, झुन्डिएर तथा छत में बसी यात्रा नगरौ, सवारी साधन चलाउँदा मोबाइल फोन को प्रयोग नगरौ, सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेर मात्र सवारी साधन चलाओ, सवारी धनीहरूले चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई सवारी साधन चलाउन नदियो, लापरवाही का साथ तीव्र गति में सवारी साधन न चलाओ, सवारी साधन चलाउनु पूर्व सवारी साधन को अवस्था ठीक छ छैन चेक जाँच गरेर मात्र सवारी साधन चलाओ, आफू यात्रा गर्ने स्थान सम्म को बाटो तथा मौसम को अवस्था को बारे में पूर्व जानकारी लिएर मात्र यात्रा गरो, सड़क में राखिएका सड़क चिन्ह तथा संकेतहरूको पूर्ण पालना गरो, जेब्रा क्रसिंग में बाटो काटने पैदल यात्रीहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दियो, जथाभावी ओभरटेक नगरो, लेन अनुशासन को पालना गरो, पैदल यात्रीले सड़क को दायाँ साइड को प्रयोग गरो, घुम्ती मोडहरू तथा सड़क में रहकर खाल्डाखुल्डी समेतलाई ध्यान दिएर विशेष सावधानी अपनाई सवारी साधन चलाओ, अन्य सवारी साधन संग प्रतिस्पर्धा नगरो, र ध्वनि प्रदूषण हुने गरी सवारी साधन नचलाओ। दुर्घटनाबाट जोगिनु जोगाउनु आम नागरिक सबैको दायित्व हो, ट्राफिक नियमको पालना गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य पनि हो।

0: समुदाय को लागी सामुदायिक रेडियो जलजला एफएम 96.4 मेगाहर्ट्ज
1: तालमा पौड़ी खिल्दो रही।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा।